0: कोशिश ऐसा करें कि पेशोले ना के लिए सारा यकीता या सेकिल ये की ली मलता ना सोचे किए किले यकीता सेकिल ये को तलाते ली ये से ला ये निको वाइटे ला कि किसे या जो अकील ये के ते हो किसे तासी सोचो दे हो कि कुछ सोचे दे हाले को तलाते ले ये हो चेत संजो को दे दे ले पेश यो हाथ या este que está se sale y está se da tranquilo todavía eso que se le va a hacer se tipo eso a partir de día con día de vez por ley y cada año con la fiesta que la mamá de Fati si es de aquí y aquí está aquí Fati
1: no he hecho nada que que te desvangue en el que cocho junto a que va a estar con día o les son y con que te es que que que te allí hay que te que ni son el co tú la tengo que entender allí hay que te que कोदत इनोंदी केती
0: आहा लाइक आडा सेटा चेको कोलेदाई तको गाचा सेटाई कोतलेदाई फारेसे केजे काइचे लाउंदिया खादा किसको कोना तोलादो सेटा तोलादो सेई काइचे कोको काइचे आलावे सपाटो होको खोताना जानाते है इचो कोके दे कानेजे कोको देस आ इतिका वाले नेले सेलेका दिया कोक्लिया दे लेतिका
1: Then a town diagin tegos and two town diacuntia guliaga jar, go and da would la, tuts in a heroin day.